0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकान जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सदर आसिफ जरदारी पारां कराचीअ में रेंजर्स कैम्प ते भारतीय प्रॉक्सी जमात अल हरार जे दहशतगर्द हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। हमले में शहीद टिन रेंजर्स जे सिपाहियुनि खे ख़िराज तहसीन पेश। शहीदनि जे दर्जात जी बुलंदीअ लाइ दुआ। सदर ज़रदारी चयो त क़ौम दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में पंहिंजनि बहादुर सिपाहियुनि जी क़ुर्बानीनि खे कॾहिं बि न विसारींदी। ॿाहिरियुनि सरपरस्ती हेठि कम कंदड़ दहशतगर्द अंसरनि जा नापाक इरादा कॾहिं बि कामयाब न थींदा। क़ौम दहशतगर्दी ख़िलाफ़ पंहिंजी सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि सां गॾु बीठल आहे। फितना हिंदुस्तान ऐं हुन जा सरपरस्त कॾहिं बि पंहिंजनि नापाक इरादनि में कामयाब न थींदा। पाकिस्तान रेंजर्स जे सिपाहियुनि हिकु भेरो ॿीहर फितना हिंदुस्तान जी दहशतगर्दनि जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणाए पंहिंजी पेशेवराननि सलाहियत, बहादुरी ऐं फ़र्ज़ शनासीअ जो मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कराचीअ में फितना हिंदुस्तान जी दहशतगर्दनि जी बुज़दिलाने हमले खे नाकाम बणाइण ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान रेंजर्स टिन दहशतगर्दनि खे मारे ऐं हिक खे ज़िंदा गिरफ़्तार करे फितना हिंदुस्तान जी जारहाणे इरादनि खे नाकाम बणायो। सॼी क़ौम ऑपरेशन दौरान वतन लाइ जाननि जो नज़रानो ॾींदड़ शहीदनि खे सलाम पेश करे थी। शहीदनि जे बारनि खे हमेशा यादि रखियो वेंदो। शहीदनि जो रतु रायगा न वेंदो।

अमेरिका ऐं ईरान जा कुझु ॾींहनि जी जंगबंदीअ खां पोइ हिक ॿिए मथां ॿीहर हमला, ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते जंगबंदीअ जी भञकड़ीअ जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। अमरीकी सेंटकॉम मूजिब ईरान जे ड्रोन ऐं मिसाइल स्टोरेज ऐं साहिली रेडॉर्स खे निशान बणायो वियो। अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताक़तवर जवाब हो। ईरानी पासदारान इनकलाब पारां अमरीकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फिज़ाई सेरक शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो। जवाब में ईरानी फ़ौजी ख़िते में मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो त अमरीका जंगबंदीअ जी भञकड़ी कई आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस पारां तशद्दुद जो जवाब तशद्दुद ज़रिए ॾियण जी धमकी। जे डी वेंस चयो त जंगबंदी मुआदे ते ईरान खे सयूं करण बाद इज़त ॾिनी। ईरान खे मुआदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीत ॿुधाए सघनि था। ईरान अमरीकी हमलनि खे मुआदे जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी परडेही वज़ारत चयो आहे त इस्तेमाल थियण न ॾिन। इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त अमरीकी सदर साबित कयो त हू असूलनि तोड़े मुआदे जो एतराम नथो करे। पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराचीअ में पाक बैरिया जी पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते सयूं थियूं। ख़िते में अमन जे क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बेसाराह जोगी हुयूं। ईरानी सदर मसूद पशिकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जी अहम किरदार जो इतराफ़ हो। ख़िते में थींदड़ वॾनि तब्दीलियुनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया। एस पी आर मूजिब खारान ऐं मस्तोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तोंग में 5 भारती हामी दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ।

ऐं बरतानिया पारां इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त में पाकिस्तान जे किरदार जी वाखाण, पाकिस्तान जी अमुन कोशिशुनि ते बेतमाद जो इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो बरतानिया जे परडे॒ही वज़ीर सां टेलीफोनिक राब्तो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिब ॻाल्हि ॿोल दौरान पाकिस्तान खिते में अमुन इस्तेहकाम लाइ पंहिंजो किरदार जारी रखण जो अज़म वरचायो।

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किस
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4 पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तमु कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दी जी ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराची में पाक बहरिया जे पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ाहमत ते सयूं थियूं। ख़िते में अमन जी क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि साराह जोगी हुयूं। ईरानी सदर मसूद पेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो।

सभ खां वधीक सहाफ़ी सिंध में आज़ाद आहिनि। इन आज़ादी जो शिकार बि सिंध हुकूमती बणिजे थी। शर्जील मेमण जो सिंध असेंबली में ख़िताब। शर्जील मेमण चयो त माज़ी में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ बदतरीन मीडिया ट्रायल्स थिया। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ठाहियो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लाइ AI खां मदद वठी रहिया आहियूं। असां कंहिं बि सहाफ़ी ते पीका इक़्तिहाद केस दाख़िल नाहे करायो। ऋण पट में कम करण सवलो ऐं शहरनि में ॾुखियो हूंदो आहे। सिंध हुकूमत लाइ आसान हो त BRT ठाहे ई न हा, पर आवाम ख़ातिर मनसूबो शुरू कयो। ठेकेदार खे अॻुवाट पैसा ॾियण ते BRT आफ़ीसर ख़िलाफ़ एक्शन वरितो। समूरनि सूबनि पंहिंजे हिसे मां बजेट जो कुझु हिसो फाखे ॾिनो।

0: ऐं खैरपुर में बंबरा ऐं धार जा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि जे झेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो लाश रखी धरणो। ॻोठ सईद इलाइक़ो में धुरनि में झेड़े दौरान फायरिंग में ग़ुलाम मोहम्मद बंबरो मारिजी वियो। मुज़ाहिरनि जो चवणु आहे त नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॿिए ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: उम्रा के ख्वाहिश मंद अफराद मुतवज्जे हो, मजहब की आव में मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों का शिकार मत बने। मुफ्त का उम्रा आपकी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। याद रखें, सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत है। बाखबर रहें, होशियार रहें।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GAFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप से दहशतगर्दन जो हमलो नाकाम, टे दहशतगर्द मारजी वाया, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR मूजिब 27 जून ते कराची में रेंजर्स के कैंप से भारतीय प्रॉक्सी तंजीम जमात अल-अहरार के खारिजन हमलो कयो। दहशतगर्दन कैंप

सिंध असेंबली में दहशतगर्दनि जे हमले में शहीद थियल रेंजर्स जवाननि लाइ फातिह ख्वानी सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण चयो त दहशतगर्दीअ जे वाके में पंज दहशतगर्द पंहिंजे अंजाम ते पहुता। मोहम्मद अवैस चयो त असां यूनिवर्सिटी रोड ते दहशतगर्दीअ जे वाके जी मज़म्मत कयूं था। सादिया जावेद जो चवणो त रेंजर्स जे शहीद पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त ख़ातिर पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं। मुसरत जबीन चयो त बलोचिस्तान जे इलाइक़े दहशत में हिकु ख़ानदान दहशतगर्दी जो निशानो बणियो, संदनि मक़फ़त लाइ दुआ घुरी वञे। अमरीका ईरान मफ़ामत बावजूद विच ओभर में छिकताण तेज़। अमरीका पारां ॿिए ॾींहं ते बि ईरान ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया जो चवणु आहे त हर्मसगान सूबे में हिकु शहर ते चार मिज़ाइल फैर कया विया। सेरेक शहर कशम ॿेट ते हमलनि जा आवाज़ ॿुधा विया। अमरीकी सेंटकॉम जो चवणु आहे त ईरान जे ड्रोन हंधनि समेत दिफ़ाई हंधनि खे निशानो बणायो वियो। कार्रवाइयूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी हिदायतुनि ते कयूं वियूं आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252586।
5: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध बजट में मुल्तान में आईटी पार्क कड़े कानून मूजिब पैसा रखा व्या आहिनि। पंजाब हुकूमत सिंध में घणा मनसूबा डि॒ना। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में जज़्बाती थी वियो। अली खुर्शीद चयो त हीउ कहिड़ो मज़ाक आहे, सिंध जे टैक्स जो पैसो मुल्तान में ख़र्च पियो थिए। उहे पैसा कंदकोट कश्मीर में ख़र्च कयो हा, हैदराबाद मीरपुर ख़ास या वरी कराची में ई ख़र्च कयो हा। हुकूमत चवंदी आहे त अपोजिशन सुठनि क़दमनि जी वाखाण नथी करे। सां सरदार शाह जी खयल तारीख़ी क़दमनि जी ॿ भेरा वाखाण कई आहे। अमरीका ईरान मफ़ामत बावजूद विच ओभर में चिकताण तेज़। अमरीका पारां ॿिए ॾींहं ते बि ईरान ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया जो चवण आहे त हुरमुज़गान सूबे में हिकु शहर ते चार मिज़ाइल फायर कया विया। सेरेक शहर कशम ॿेट ते हमलनि जा आवाज़ ॿुधा विया। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरान जे ड्रोन हंधनि समेत दिफ़ाई हंधनि खे निशानो बणायो वियो। कार्रवाइयूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे हिदायतुनि ते कयूं वियूं आहिनि। अमरीकी हमलनि खां पोइ ईरान बि जवाबी कार्रवाई कंदे खिते में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। ईरान पासदारन इनकलाब जो चवण आहे त बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। हमलो इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जी शिक हिक जी भञकड़ी आहे। कुवैती फ़ौज जो चवण आहे त केतिरनि ई ड्रोन्स ऐं मिज़ाइल्स खे तबाह कयो वियो। बहरीन पारां बि पंहिंजी सरज़मीन ते ड्रोन हमले जी मसम्मत। अमरीकी सदर पारां ईरान जो वजूद ख़तम करण जी धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ीअ ते अमरीकी फ़ौज ईरान खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडार साइट्स ते हमला कया विया। अहिड़ो वक़्तु अची सघे थो जो असीं वधीक सब्र न करे सघूं, पोइ असांखे कमु पूरो करण लाइ फ़ौजी तरीक़ो अख़्तियार करणो पवंदो। जेकॾहिं ईअं थियो त इस्लामी जमहूरिया ईरान जो वजूद ख़तम थी वेंदो। खैरपुर में बंबरा ऐं धार जा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि जे झेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो लाश रखी धरणो। घोट सईद इलाइक़ो में धुरनि में झेड़े दौरान फायरिंग में ग़ुलाम मोहम्मद बंबरो मारिजी वियो। वारसनि पारां लाश रखी धरणो।

0: मेहड़ में उजाला परवीन ऐं प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ सियासी समाजी धुरनि जो एहतजाज। अॻवाननि जो चवणो हो त सिंध जी मज़लूम नियाणियुनि उजाला परवीन ऐं प्रिया कुमारी खे पुलिस अञा ताईं बाज़ियाब नाहे करायो। नियाणियुनि जे अॻवा जा वाकिया वधी रहिया आहिनि। पुलिस जी जोड़ियल JIT बूटो ॿारे न सघी। सिंध जो शहूर सरापा एहतजाज आहे। नोटिस वठी नियाणियूं बाज़ियाब करायूं वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़।

0: GFA मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86।
0: जी हाँ, 3135525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अच्छा खाली चुनी जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा से जो आप कैसी हैं, मैं ठीक और आपने लिखा है वह गुड डे, वेलकम करती हैं चाचा आपको। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम और सलामत। मीर मोहम्मद बिरोही हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। मोहम्मद वसीम अहमदानी हमारे साथ, आई मीन हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। और उसके अलावा महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते हैं गुड आफ्टरनून ऑल लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको भी। अब्दुल गफार कैसर हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप हमें सुन रहे हैं बहावल नगर से, खुश आमदीद कहते हैं आपको। मीर मोहम्मद बिरोही हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, शो आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। होठ दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से, मीर मोहम्मद बिरोही, अशफाक अली बिरोही, साजिद अली बिरोही हमारे साथ हैं, थैंक यू जी। और हमारे साथ हैं मधोश भाई, आपको भी खुश आमदीद। बरियाम अली जोतोई हमारे साथ हैं, दिल की धड़कन से सिदरा आपका वेलकम करते हैं इस प्यारे शो में, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और जी हिदायतुल्लाह कहते हैं कि अदी कराची चला गया हूँ, अब आपका शो रात में सुनता हूँ, दिन में काम पर जाता हूँ, आज छुट्टी थी तो आ गया हूँ, अब मैं रात वाला भाई हो गया हूँ। चलें ये तो अच्छी बात है, प्रोग्राम सुनते ही अच्छी बात है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो भाई हम भी आपको मिस करते हैं, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे वाले मैसेजेस हमारे प्रोग्राम में नहीं होते तो जाहिर सी बात है मिस करते हैं। ओके जी कोई बात नहीं, वेलकम करते हैं आपको। मैं इरफान सियाज साहब कहते हैं ग्रेट होस्टिंग में मार्जरी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को जल्दी से लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले। और मुझे ये बताइएगा जरूर कि जिंदगी में किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हम अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं, उनका इंतजार करना पड़ता है। और वो चीजें क्या हैं ये तो खैर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए जरा कि जिंदगी में किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट्स एंड ए स्किन प्यूरी प्रोडक्ट्स, तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595। इस नंबर के ऊपर आपने राबता कर लेना है, राबता करने के बाद जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए व्हाइट एज एंड ए स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद वापस आकर आप लोगों के साथ बातें करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि क्या फायदे हैं जब आप व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: FM 88 सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी चिल्ड को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 03-1-25-25-786।
4: जी हाँ 3-1-25-87
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरतियों को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। और क्यों ना बढ़ाएं, क्योंकि अब आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, तो फायदा उठाएंगे और अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जाएंगे। चाहे आप लड़के हो, लड़कियां हो, मर्द हजरात हो, खवातीन हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इतने अच्छे और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जो है ना वो तैयार किए गए हैं। और मजे की बात बताऊं कि जब आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं ना कि बाजी असा तो ही प्रोडक्ट खड़ा आयो तवर तो ही प्रोडक्ट कोने को, तो बाबा हाँ व्हाइटिश वारा जी प्रोडक्ट है ना, ही तवान के लिए हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। इो न हाँ कोई भी बानो ना बनाए सको, तो असा ही वो प्रोडक्ट खड़ा आयो तव यो अवेलेबल ना है। असा सब प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर तुम साबुन हणंदा तो साबुन है, फेस वॉश हणंदा तो फेस वॉश है, नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एक्नी ट्यूब है, इलाही सारा मजेदार प्रोडक्ट्स हैं जेके तुम इस्तेमाल करी सको था पांजी खूबसूरती की वधाईंदा वणो। इन पाण के जेको है ना थोड़ो पांजे पांजो भी ख्याल रखना को, यो भी लाजमी शय हुंदी है। अगर तुम हर कें जो ख्याल रखो था, जिंदगी में डाढा मसरूफ आयो, हर कें जो तुम ख्याल रखो था, हर कें जे बारे में सोचो था, तो कुछ पंज मिनट पांजे लाए भी कढंदा कयो। पाण के जेको है ना थोड़ो स्किन केयर की तुम जरूरत हुंदी है, तुम स्किन के, तो अगर तुम भी स्किन केयर करण चाहो था, तुम खबर नी पे कड़ा प्रोडक्ट असा इस्तेमाल करण घुर्जन, तो तुम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करो है। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर तुम की बुधाईंदी हल व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक अड़ो प्रोडक्ट है जो न सिर्फ तुम खूबसूरती की बधाई है, बल्कि तुम स्किन के फेयर बनाई है, तुम स्किन के फ्रेश बनाई है, तुम स्किन के प्रोटेक्ट कन्द है, तुम स्किन से सफा ग्लो अची वो है, तुम हमेशा ग्लो कन्दा रहा तुम स्किन सफा फ्रेश थी वेंदी है। अगर तुम भी चाहता तो तुम स्किन से फ्रेश लुक हो जाए, तुम हमेशा जो है हेल्दी स्किन वा मू हो, तो तुम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सो था। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो एवोकाडो, एलोवेरा और खीर से तैयार थियल है, ये सब नेचुरल शयूं के अंदर एड कई व्यू हैं, जी तुम रिजल्ट मिले सफा VIP। उन अलावा अगर तुम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम से अगर कोई सुठो साबुन लगाना चाहो था या फिर तुम फेस वॉश लगाना चाहो था, तो तुम व्हाइट एश ब्यूटी सोप अवेलेबल है, तुम व्हाइट एश जो फेस वॉश भी अवेलेबल है। साबुन जो एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार थियल है, फेस वॉश जो है वो वाइटमिन सी से तैयार थियल है। एतरा जबरदस्त क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, अगर एक दफा तुम इस्तेमाल करना तुम खबर पैजी वी, तो बाबा सिदरा जो मथो ये नी हणे, वाकई प्रोडक्ट में कमाल है। जो कमाल तक मिल तद मिल जैसे तुम इस्तेमाल कर नाइट क्रीम अगर तुम इस्तेमाल ना करना चाहो, तुम कोई फेयरनेस फार्मूलो हो चाहो, तो बाबा अस जॉब कन्दा आयो, कोई कम कार कन्दा तह जो मंझन जो टाक मंझन जो या फिर कारे भी वनो पवे तो डी के टाइम में, तो तुम व्हाइट एश लवली क्रीम जो होजन ढो जरूरी है। छो तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो फेयरनेस फार्मूलो है, फेयरनेस फार्मूले से गडो गड तुम स्किन के जो ना वो प्रोटेक्ट भी कन्दी है, छो इन अंदर सनस्क्रीन भी एड थियल है। सनस्क्रीन जो कम यो हों कमाल यो हों, तो तुम स्किन से जो भी उस जहा किरणा पवंदा है जो खतरनाक हों, उन्हें रोकी है, तुम स्किन की हिफाजत कन्दी है। तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन से तैयार थियल है, अंदर टी वाइटमिन जो कैप्सूल एड थियल जो स्किन के गोरो बनाई, स्किन के हेल्दी बनाई, तुम स्किन की हिफाजत कन्दा, जैमें वाइटमिन B3 है, वाइटमिन ई है, वाइटमिन सी है, वाइटमिन डी भी है। ये सब प्रोडक्ट जो तुम स्किन के खूबसूरत बनाए छींदा, तुम स्किन जो शाइन कन्दी वी, छो इन अंदर ग्लिटर भी मौजूद है। उनके अलावा मर्द मायू सभी इस्तेमाल कर सकते, इन में कोई एज लिमिट ना है, तमा बार बच्चा कुराड़ा जवान हर कोई इनके इस्तेमाल कर सके, तो एतरे जबरदस्त तरीके वो प्रोडक्ट है जो तुम इस्तेमाल करना तरी तक खबर पड़े। तो व्हाइट एज लवली क्रीम तुम लगाओ जी, तुम भी लवली लवली थी वनो। उनके अलावा अगर तुम एक्नी की वजह से परेशान आयो, दाणा तुम जो न पिछू ना छे नहीं, तुम हमेशा परेशान हूं इन गाल के वी, तो बाबा एक्निन में कि जान छदायूं, तो तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तुम सिर्फ न दाणन के खत्म कर, बल्कि तुम्हें चेहरे से जो निशाना होंदा, कोई कट जो निशान आ, कोई सड़न जो निशान आ, ब्लैक हेड्स आन, वाइट हेड्स आन, एक्स्ट्रा ऑयल आ, ये सब चीजों कंट्रोल में अची वेंदी, तुम्हें स्किन क्लियर थी वेंदी, बेदाग थी वेंदी, गोरी गोरी थी वेंदी। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है,
इहो बि हर कंहिं माण्हू जे लाइ ऑल स्किन टाइप जे लाइ तव्हां बिल्कुलु इस्तेमालु करे सघो था। आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे ऐं उन खां अलावा ही सभु प्रोडक्ट जेके तव्हांखे ॿुधाया आहिनि हिन खे इस्तेमालु करण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे हिन खे तव्हां राति जे टाइम लॻाए सघो था। लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा, हथ बि चङे तरीक़े सां वॉश कंदा, उन खां पोइ तव्हां अप्लाई कंदा। जिते जिते तव्हांखे दाणा आहिनि, एक्नी आहे, निशान आहे, कट आहे, निशान कोई बि जेको तव्हां रिमूव करणु चाहियो था उन जॻह ते लॻाए तव्हां सुम्ही रहो ऐं तव्हां सुबुह जो ॾिसंदा त तव्हांजे चेहरे ते फ़र्क़ु आहे, तव्हांखे वाज़े नज़र ईंदो। ऐं अगरि वाइटेश ब्यूटी क्रीम आहे जंहिंखे तव्हां राति जे टाइम लॻाईंदा, नाइट क्रीम आहे, फेस वॉश करे पोइ लॻाइजो। ऐं वाइटेश लवली क्रीम जेका आहे हिन खे तव्हां ॾींहं जो लॻायो, राति जो लॻायो, मंझंदि जो लॻायो, जंहिं महिल बि लॻायो तव्हांजी मर्ज़ी आहे, छो त हीउ फेयरनेस फार्मूलो आहे, हिन खे तव्हां कहिड़े बि टाइम लॻाए सघो था। जनाब तो प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसी बहुत सारी वाली बातें करते हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होती हैं, आप लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए होती हैं, क्योंकि कई मरतबा मैंने ये चीज नोटिस करी है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, वो थोड़ी सी ना मासूम है, उनको इन चीजों की समझ नहीं आती कि कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कैसा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो खूबसूरती अब आपकी आपके हाथ में है क्योंकि आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप हमारे साथ कहां पर मौजूद हैं, कहां से मौजूद हैं, कौन कौन हमारे साथ हैं और जनाब आपके यहाँ मिल रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और अगर नहीं मिल रहे तो डायल कीजिएगा 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी आसानी के लिए है ताकि आप परेशान ना हो, आपके एरिया में अवेलेबल हो जाए। तो नंबर के ऊपर आता कीजिए और उन्हें बताइए कि आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

स्वागत है प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि मुझे बताइए जिंदगी में किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए बताइए जरा मैं जानना चाहती हूँ और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मोहम्मद जमान भाई मेरे साथ मौजूद है वेलकम टू शो और इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी वेलकम करते हैं और हमारे साथ हैं टूफ टूसल से मुलाई मुजाहिद बोजदार वालेकुम अस्सलाम स्वीट आरजे सिद्धू जी आप कैसे हैं हमेशा की तरह आप लश पश होंगी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे हंसी मुस्कुराती रहे आमीन जी थैंक यू सो मच और हमारे साथ हैं केसर खान बुरगड़ी भाई केसर खान हमें मीरपुर खास से सुन रहे थे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू जी थैंक यू और ओके जी वजात मलगानी भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं बड़े दिनों के बाद कहते आंसर फनी में होना चाहिए या फिर रियल लाइफ में जो चीजें चाहिए भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह से भी दे दें आप जवाब और हिदायतुल्लाह कहते टॉपिक आंसर बुरे वक्त का क्योंकि कभी भी आ सकता है बुरा वक्त बुरे वक्त का कौन इंतजार करता है और उसके अलावा वजात कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ वेलकम तो बनता है बिल्कुल जी आपका वेलकम बनता है वेलकम टू शो अहमद काजू हमारे साथ मौजूद है अहमद कहते हैं अच्छा आप हमें खिपरों से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहा जाता है अब्दुल खालिक गबोल हमारे साथ मौजूद हैं बामा ठीक है ताम उधर किया है

भी बहुत प्यारा गाना सुन रहे हैं और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं किशोर भाई के दिल सलाम अदा खुश आयो अदा अज मुंह अना मुंह भी ना धो तो अवां के कमेंट कयो आहे या तो सुठी गाला ना ताकि उठण खां अवली मां याद आया अच्छा ये मोहब्बतूं आहिनि बाबा अल्लाह करे कामयाब रहन हमेशा आसां सां गॾु रहन और वजात कहते हैं सिदरा ओनली वन मंथ प्लीज वेट आफ्टर एवरी डे ऑन योर एफ एम कैसी लगी मेरी अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी थोड़ी थोड़ी समझ आई कि आप कहना क्या चाहते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं जनाब और साथ साथ आप अगर अभी तक हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और आपने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दें जरा और अब्दुल खालिक कहते बाजी माँ हेल्पलाइन के फोन कयो पर फोन न पयो खणे या तव्हांजी शिकायत बिल्कुल पहुचाईंदासीं बाबा तव्हांजी फोन अगर खणंदा न त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कीअं थींदियूं अवेलेबल न थींदियूं त तव्हां वठंदा कीअं सो इहो हिकिड़ो वाक़ई सीरियस मैटर आहे इन ते इनखे इग्नोर न कजे

ओके जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। अच्छा फहीम शेख कहते हैं टॉपिक किसी के दिलासे का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये तो बात है। वैसे लोग दिलासा भी मेरे ख्याल में तभी देते हैं जब उन्हें हमें कोई मतलब होता है। और मुझे ये भी लगता है कि बिना मतलब के लोगों को ढूंढना और लोगों का इंतजार करना, ऐसा होता ना, हम ये सोच रहे हैं कि बिना मतलब के लोग अगर हमारी जिंदगी में आ जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए जिसका कोई मतलब ना हो। ये इंतजार करना नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है।

दिस सॉन्ग. बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत रोमांटिक सा गाना है जो कि हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं. और साथ साथ अगर अभी तक आप YJH ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं तो आपने डायल करना है 03-1579-0595. अच्छा मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं सिडो जी, टॉपिक मेरे ख्याल में जिंदगी में गुजरे हुए वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता. ओके अच्छा मोहम्मद जमान भाई, मेरे ख्याल में आपने जरा इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही आप मशवरा दे रहे हैं लोगों को. चलें कोई नहीं, अच्छी बात है. मुझे इस चीज से अंदाजा हुआ कि वाकई आप सच्चे हैं.

अच्छा मजाक कहते हैं कंहिंसां दिलि लॻाइण खां बहितर आहे त माण्हू क्रीम सां दिलि लॻाए, वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां दिलि लॻाए, पाण बि ख़ुशि ऐं दिलि बि साफ़ ऐं चेहरो बि साफ़। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। और हिदायतुल्ला कहते हैं अदी आपको पता है की पेट्रोल पंप पर लड़कियों को क्यूँ उतारा जाता है, क्यूँकी पेट्रोल पंप पर लिखा होता है की आग लगाने वारी चीज़ें दूर रखिये। अच्छा मनैया ॻाल्हि हुई। अच्छा सनाउला बिरोही हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है, ठीक ठाक है। और मोहम्मद ताहिर लुंड भाई हमारे साथ मौजूद है। वलीदाद खान लुंड नजद से ठारजा से कहते प्रोग्राम आपका लाजवाब है। ओके जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ साथ मौजूद है। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मिलेगा नहीं तो आप परचेज कैसे करेंगे, तो अवेलेबल कराइए और डायल करते रहिए 03 15 799 0595।

बताओगे जी, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं चंदा, कैसी हैं आपकी चंदा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं। किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक कभी वक्त बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता नहीं है, उसे बदलना पड़ता है। अगर आप अच्छे वक्त के इंतजार में बैठे रहे तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होगा। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। क्या बात है। कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप। अच्छा, मोतिया सेठानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। मोहम्मद ताहिर भाई मेहरापुर FM से हमें सुन रहे हैं। ओके जी, वेलकम करते हैं। अली अकबर बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंड से, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। बजाज कहते हैं असांखे फेस वॉश की जरूरत आ, यो फेस वॉश सऊदी में कड़ी जगह ते मिलंदो? हाँ या तो खैर मुख्य भी खबर कोने का, जो नंबर तक बुधाएं थी ना, इन नंबर से तुम राबो कर वेठो, उनका पुछो तो सऊदी में अवेलेबल आन या फिर कोन। अगर अवेलेबल ना तो पाकिस्तान अचो तो वो वठी वंजो। सही है।

0: में नहीं आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि जिंदगी में किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बताइए जरा। अच्छा जी, दीदार अली बिरोई हमारे साथ, कहते नाइस प्रोग्राम, थैंक यू। मोहम्मद वसीम अहमदानी, ओके जी, आपको भी वेलकम करते हैं। एहसन मोहम्मद अहमदानी हमारे साथ हैं। जेब हुसैन अहमदानी कराची से, उदास शामू हसीन चेहरा लगल जिनते शदीद पहरा, जडें शामू उदास थींदियूं अमांचू यादूं जरूर एंदियूं। वाह वाह, शायरी लिखी अथव, बहुत बेहतरीन। और उसके अलावा चाचा खालिद, आपने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया जी। और सैयद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको खुशामदीद कहते हैं भाईजान। अच्छा किशोर भाई कहते हैं, कभी कभी सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। यही चीज, बिल्कुल यही चीज, जो होता है वो देखा नहीं जाता। अच्छा मोहम्मद सलमान क्या कहते हैं,
1: बलड़े रोज करके बहाना, मैं आके तेनु रोज मनाना, ये गल बड़ी माड़ी नो कह, ना तू समझ अनाड़ी लाइक दैट, तेनु लगता जे अन्ना बुरा ना, ते लब ले तू कोई ना मान।
0: अरे मोहम्मद सलमान भाई कैसी बातें कर रहे हैं,
1: ये गल बड़ी माड़ी नो कह,
0: भाभी को पैसे देने ही चाहिए, और आप दिया करें, वो बहुत अच्छी है।

0: हाँ जी
1: फिर
0: इस तरह कहते हैं देर नहीं करनी चाहिए। आप प्रोग्राम सुन रहे व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपका हमारा साथ पूरी पूरी दिन बड़ी तरह सुनते रहिए, साथ दीजिए। टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास। तो मौजूद रहिएगा और साथ दीजिएगा।
2: अब आप सुनेंगे नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अरे दहशतगर्द है मस्तों में पंज भारती हामी दहशतगर्द मारजी वा मारजी वाल दहशतगर्द शहर ने कानून लागू कर इदारन ते हमलन में मुलविस हुआ। अमेरिका ईरान जा कुछ डी जंगबंदी का एक बे मथा हमला बिन्हीं मुल्क एक बे जंगबंदी की भंजकड़ी जो इल्जाम भी लगा छो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब ईरान के ड्रोन ए मिजाइल इसोरे के साहली रेडार्स के निशानो बनाए पो है। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताकतवर जवाब हो। ईरानी बाजार ने इनकलाब पारा अमेरिकी हमला नाकाम बनाने की दावा। बाजारन इंकलाब ईरानी बहरिया ए फजाइया सरक शहर से अमेरिकी हमले के नाकाम बनाया है। जवाब में ईरानी फौजी फौज खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन के निशानो बनाया। ईरानी परेही वजारत के तर्जमा है अमेरिका जंगबंदी की भनकड़ी कई ईरान दिफाई कार्रवाई क्यों। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पारा तशद्दुद जो जवाब तशद्दुद जरिए देने की धमकी। जेडी वेंस चो है जंगबंदी वायदे से ईरान के सयूं करण बाद इज्जत दिनी है। ईरान के वायदे से इख्तिलाफ आन सीधी रीत बुधाए सन था। ईरान अमेरिकी हमलन के वायदे की भंजकड़ी करार दे छो। ईरानी परे वजारत चो है विचोभर जहा मुल्क ईरान खिलाफ पानी सरजमीन इस्तेमाल थे न दियन। इब्राहिम अजीज चो अमेरिकी सदर साबित कर उसूलन तोड़े वायदे जो एतराम न तो करे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अदा छा गाल हा डाडो परेशान पियो लगी भाऊ छा कया बिन सालन खा अमड़ पथरिन जे मर्ज में मुब्तला है डॉक्टर।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मिर्पुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ आपको मिलेंगी वो वाली जो कि हमेशा आपके साथ मौजूद रहने वाली है। तो बिल्कुल इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए और डायल करते रहिए 0315799 0595। ओके जी, प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और कॉमेंट करते हैं और कॉल भी करते हैं। ओके जी, तो हम दूसरे घंटे में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अभी आप लोगों की कॉल्स जो है वो कुछ मैं जरा पिक कर लूंगी क्योंकि कॉलिंग भी होनी चाहिए, प्रोग्राम में ऐसा बोला गया है मुझे, तो कॉल्स भी लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं। ओके जी, मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल ही पूछा कि आप मुझे बताइए कि किस चीज का जिंदगी में हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारी चीजों का इंतजार कर रहे होते हैं हम, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किस चीज का इंतजार आपको क्या लगता है कि नहीं करना चाहिए जिंदगी के अंदर। ओके जी, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों की कॉल्स लेना जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी कॉल्स लेंगे और बस यही वाला लिंक आपकी कॉल्स लेंगे। तो अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉलिंग नंबर हमारा है जनाब 0332 13 22 and 88। यस, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो वो हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी। ओके, सो फर्स्ट कॉल की जाने बातें देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: केरा से सगर मौजूदा
2: बानूर
1: से। ओके, छाला भाग खुश आयो, ठीक ठाक नंबर ब्लॉक हो जाए काल के लगी हाँ। अच्छा, वो तो मुख्य बुधायो तो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया?
2: व्हाइट एज की क्रीम लगा
1: रहे हो? लवली लगायो था
2: जी।
1: सफा वीआईपी थी भी आयो?
2: अच्छा,
1: जी जी ठीक आया। केड़न दोस्तन की याद कंदा? मोहब्बत आयन तवाजू केड़न दोस्तन की याद कंदा? जल्दी सलाम दियो लाई कॉलिंग वठनी हुई। अलाई साथ छयो? अच्छा, शामिल थिया त आयो, कॉल जो कई अव? जी चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। या गाल करनी है तो पोसा बी कॉल वठंदासी। आई कॉलिंग नंबर आही 0332 13 22 and 88। नेक्स्ट कॉल दिसों दा केर एसएस अगर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: केर एसएस अगर मौजूद है?
2: वफा चांडे।
1: वफा चांडे कॉल किया, आई छाला ताजो ठीक आयो? अलहमदिल्ला ठीक आया। जी जी, बाहरियो लगी पयो ने ताडे बाहरियो इन?
2: अच्छा रे बाहरी।
1: शुक्र आ शुक्र आ। मुखे बुधायो प्रोग्राम बुधो पया?
2: सच्ची बुधायो आई
1: भले ताजी मर्जी आ, जको बुधायो
2: प्रोग्राम को ना बताऊ?
1: चलो प्रोग्राम नथा बुधो तो की खबर पई तो कॉल वठांदी।
2: बस काय तो दसो।
1: चलो मुखे यो बुधायो त प्रोडक्ट जी खबर आ जकी मा प्रोग्राम में बुधाया थी?
2: ना ना बिल्कुल ना।
1: चलो गेड़न दोस्तन की याद करना या छा चवण चाहिंदा? कॉल कई आ त ज़ायरा को चवण चाहिंदा?
2: दान प्रोग्राम केड़ो की थे
1: जी?
2: देखरे मुंदा
1: मोहब्बत आइन तमा जो
2: तमाम खूबसूरत हुंदा?
1: जी जी,
2: नया त दोस्त कुछ आन जे के टांग बिदंदा?
1: जी जी, शामिल कयो
2: देखो आला रो शाला
1: जी
2: एम के आप दो
1: सलाम। ओके, थैंक यू सो मच वफा चांडे, तुम प्रोग्राम में कॉल गई। ओके जी, कॉलिंग नंबर 0332-1322-188 आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिए। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जी,
1: के रस से गड्ढा
2: अजी कुर्बाना निकास के लिए वो बनाया कोसा गुलाम कास के लिए लगी झंडो भरी जा
1: आई ली ताजी कॉल की लगी वेदी आए इतरो जल्दी जल्दी आई रोज
2: हां बिल्कुल आए ले जी आपको कॉल करती है बैठे दी आ रहे हैं जो तो सवाल कुछ है जिंदगी में मां एक टाइम मां इंतजार न कीजिए वो बेवफा सोने मां इंतजार न कीजिए
1: बेवफा जो इंतजार न कीजिए
2: हां बेवफा मां इंतजार कदे न कीजिए जिंदगी में एक दफा आती को वरी तो कोई सदा दे यूं है उनके इंतजार कदे न कीजिए न जिंदगी मचे
1: बिल्कुल सही था जो तां ते इंतजार न था कयो न केजो
2: आसा जिंदगी में इंतजार मान जो कयो ही को न पर मान इंतजार कयो दी पर जिंदगी में अच्छी पो वरी असांगे धोखा सदा बार नहीं हलो
1: ऐ
2: ली तो ना पहाण जिंदगी में जको नहीं जिंदगी असा हो जाने चली आए धाण बिल्कुल जिंदगी मु न अचे हाण वसी पेन के चंदा जिंदगी में इंतजार न की जो
1: सफा सही था जो सफा ता पाजी जगह ते सही आए मुके बता जको प्रोडक्ट बुधाए थी वो इस्तेमाल कयो तो वे केडो प्रोडक्ट हाणो
2: बाबा ये जवा ता बुधायो बा न क्रीम जो नालो जो को न सै देन पे अच्छे पे वरो विसरे पे बाकी क्रीम इस्तेमाल करू बाकी
1: केडो व्हाइटिश या डी स्किन
2: व्हाइटिश व्हाइटिश
1: ओके
2: यारा लगे ते व्हाइटिश क्रीम हण वारा यारा लगे ते ये ना
1: बिल्कुल बिल्कुल केडन दोसन के याद करना
2: जी आज असा कलाम को बुधायो को सुठो कलाम बुधायो
1: जी
2: मंतार मोलाई जो जे असा जे नाले करे छियो
1: चलो ठीक है ओके या दोसन के याद करना जी जी
2: काठड़ी का गुलाम रसूल मरी आजी सोलंगी काल गिलाशारी झुड़पी तरह का गुलाम रही बलोच चार लुंडू नाल फकीर में चलालानी
1: जी
2: के बुधर सदन सलाम
1: हो ओके ओके ओके वेलकम करते हैं सब दोस्तों को और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो बिल्कुल साई तपियो पयो होयो अदो अदे हला के एडा दुख दिना है नेक्स्ट कॉल वेटिंग था दिस ऑन द नेक्स्ट कॉलर के जैसे सेकंड मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम केड़े से सेकंड मौजूद है हेलो आवाज तो थोड़ा स्टार्टिंग में आयो वरी पो वरी कॉल लगे तो थोड़ा डिस्टर्ब थी वही ओके जी नेक्स्ट कॉल की तरफ अचूं था कॉलिंग नंबर है 0332-1322-188 एकड़ो डी असाजी कॉल सही इंदिया और बे डी असाजी कॉल जको थोड़ा मसलो कंदी है सो इन शे के भी नजर अंदाज न कंदासी इन शे के भी याद रखंदासी सही ओके जी सो मो जवां का सवाल पुछो है त जिंदगी में केड़ी शे जो इंतजार न करण घुरजे छो त जिंदगी में खोड़ सारी शयूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजो असां इंतज़ार करे रहिया हूंदा आहियूं ऐं असां इन सोच खां बिल्कुलु गुम हूंदा आहियूं त उहे चीज़ असांजी ज़िंदगी में थींदी बि या न थींदी ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-188 ओके सो लॻे पियो नेटवर्क जो थोरो इशू आहे नेक्स्ट कॉल ॾिसूं केरु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदिल्ला ठीकु केरु मौजूदु
3: आहे
1: न मां चाहियां थी त तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो असांजी सुहिणी इरम असांखे कॉल कई आहे ईअं न अलहमदिल्ला ठीकु आहे इरम तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो सभु ठीकु अथव घर में अमा ख़ुशि आहे अमा चलो तव्हांजी धीअ बि ख़ुशि आहे धीअ चलो सुठी ॻाल्हि आई मूंखे ॿुधायो त रेशम गली चकर लॻो अथई कोन कल वाइट एस जी क्रीम वठी आई आहे चलो ठीकु आहे इस्तेमाल कजो ॿुधाइजो रिज़ल्ट कीअं मिलियो आहे तव्हांखे वैसे बि तव्हांखे जेकी क्रीम आहे न उहो रिज़ल्ट इलाही भलो ॾींदी चलो इहो ॿुधायो त ॿियो छा चवंदी टॉपिक ते छा चवंदी मुंहिंजो इंतज़ार न कयो छो मां त टाइम ते ईंदी आहियां पूरे हिकु बजे चलो चलो चलो न कंदा बसि अॻिते सही आहे अहिड़ा मां चवण वठिजो कजो मुंहिंजो इंतज़ार मां हिकु बजे ईंदी आहियां रोज़ कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो चलो या बस ठीक है गर्मी में दोस्तन के भी सारे सड़े होते हैं गर्मिया तो दोस्तियों का भी ना है या बहने का गाल भला ओके सो कॉलिंग नंबर है 0332132288 तुम भी कॉल कर सको था अच्छा तुम जै भी गोठ में आयो जै भी शहर में आयो जिते भी आयो उते हर जगह ते व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिन ता वनी उता वठी सगो था आई वठी सग था त जाहिर सी गाल तमा इस्तेमाल कयो जे ताके खबर पई तही जे के प्रोडक्ट मा बुधाया पई केतरा जबरदस्त आहिन न सिर्फ तमा जे खूबसूरती के वधाईना बल्कि तमा जे खूबसूरती जे हिफाजत भी कंदा आहिन सो बिल्कुल तमा इस्तेमाल कयो पया व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स त तमा असा के बुधाईना कयो आई असा के बुधायो जे सा खबर पई त असा जे के सोणा लिसनर्स आहिन ओ केडो प्रोडक्ट इस्तेमाल कन पया ओके जी सो कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉल की तरफ अचूं था दिसूं था नेक्स्ट कॉलर केरस से गड मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: अस्सलाम वालेकुम
1: जी वालेकुम अस्सलाम केर मौजूद है
3: यास्मीन बात कर रही हूं
1: मिरपुर खास से यास्मीन बात कर रही हैं मिरपुर खास से कैसी हैं यास्मीन ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ मजे में मुझे बताएं प्रोग्राम
3: से
1: हाँ वही
3: लगती
1: वही मैं सोच रही थी पहली मरतब आपकी कॉल लगी आपको खुश आमदीद कहा जाता है प्रोग्राम सुनती हैं आप वैसे मेरा
3: जी हाँ बिल्कुल
1: अच्छा
3: लेकिन मेरी कॉल नहीं लगती
1: चलिए आप कोशिश किया करें आपकी कॉल ऐसे लग जाएगी जैसे आज लगी है
3: आपकी आवाज बहुत अच्छी है बिल्कुल भी किसी भी लिसनर पे कभी भी गुस्सा नहीं करती है बहुत अच्छी है आप
1: थैंक यू ये आपकी मोहब्बतें भाई ऐसा आप समझती हैं वैसे कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है मैं निकाल लेती हूँ लिसनर्स के ऊपर अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं यास्मीन के आप टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगे
3: टॉपिक क्या है आपका
1: टॉपिक ये है कि जिंदगी में किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए सोचने लग गई चलिए ठीक है मुझे ये बताएं कि मैं जो प्रोडक्ट बताती हूँ उसके ऊपर आप बताएं जरा इस्तेमाल करती हैं करेंगी क्या इरादा है
3: मेकअप वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती कभी भी नहीं किया
1: चलिए फिर आप साबुन तो लगा सकती हैं लवली क्रीम लगाइएगा जरा मेरे कहने के ऊपर
3: ठीक है
1: चले बहुत शुक्रिया यास्मीन आपने कॉल करी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और क्या कहेंगे
3: आपकी आवाज बहुत
1: अच्छी थैंक यू बस इतनी तारीफें करती हैं मैं उड़ना स्टार्ट हो जाती हूँ यास्मीन का बहुत शुक्रिया पहली मरतबा इनकी कॉल लगी हमारे प्रोग्राम में हाय क्या बात है जी और नेक्स्ट कॉल की जाने बात है कॉलिंग नंबर है 0332132288 सो नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम क्या मौजूद है हालार विशाल कॉल किया कितना का कॉल किया
4: अलाहाबाद लाड़काणो
1: अलाहाबाद लाड़काणो मुख्य बताया प्रोग्राम बुधो प्या
4: प्रोग्राम
1: न प्या बुधो तो कॉल छू किया उन्हें की कॉल करण जो मौको ने जेकी बेचारा प्रोग्राम बधन पया
4: बस कॉल लगी
1: चलो
4: ओके
1: मुख्य यो बुधायो तो टॉपिक भी न बुधो हों जाहिर सी गाला सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तवा इस्तेमाल करण जे बारे में सोचो आए न चलो वट जो जरूर कड़ा दोस्तन के याद कदा चलो थैंक यू सो मच तुम कॉल कई प्रोग्राम में कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉल वटूं था दिसूं था नेक्स्ट कॉलर केर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम अभिशाल खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह तां बुधाय कि आयो केर से सगट मौजूद आयो
5: ये दिलीप कुमार मेघवाड़
1: ओके दिलीप कुमार भा तांजी कॉल लगी आए तांके वेलकम चो था मुखे बुधाय प्रोग्राम बुधो प्या असा जो
5: जी प्रोग्राम यार बुधो पे रेडियो यो 88 मीरपुर खास का प्रोग्राम लखरा दा जाले
1: जी मुखे यो बुधाय तो टॉपिक ती छा चोंदा
5: जे जे लगे तो तांके कॉल करन असा जो इंतजार नहीं करन सबे यक तो लगियो
1: या भी गाल आए आई मुखे बुधाय तो तमा जेको प्रोडक्ट बुधाय पे कोई इस्तेमाल कयो आए केडो इस्तेमाल कयो था
5: अच्छा ये तां जेको क्रीम
1: जी
5: ऐसा कौन इस्तेमाल कयो अभी ये थर में ना है ऐसा के वतन जिला मिरपुर वंदन पाटे पर हो असा का परे है
1: चलो ता इते पांची गोठ में अवेलेबल करा ने जेको प्रोग्राम नंबर बुधाय ने ते एक दफा ता कॉल करी दिस जो ठीक है तव्हां नोट कजो, मां नंबर तव्हांखे ॿुधायां थी। जी जी, करे वेठो करे वेठो।
2: हा, रुस्तम अली पवार, नवल राज, दानिश कुमार, सूरज गुलशंकर लाल, रामचंद मकान, मलक मुंद बलोच, मोहम्मद साले लगर भी देख के बदन दा सबनी के सलाम।
1: ओके, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच प्यारो भाषा से गड मौजूद हो। उन खां अलावा कॉलिंग नंबर जेते तमा राबतो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था, वो नंबर आहे 03 15 7 99 0 5 9 5। ही नंबर आहे जंहिं ते तव्हां कॉल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। काॾे वञण जी तव्हांखे ज़रूरत न आहे, बसि तव्हां उते पंहिंजे एरिया में अवेलेबल करायो, जीअं तव्हांखे वठण में आसानी थी वञे। ठीकु आहे, सो ही नंबर ते तव्हां लाज़मी राबितो कजो। टाइम थियो आहे असां हाणे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वञूं था, उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां ॾे मोटी अचूं था। तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो। तव्हांजो असांजो साथ जेको आहे पूरे 3 बजे ताईं आहे। सो हीअं वञी हीअं मोटूं था। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत रहिए।
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ਸੋ ਤਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿੱਕੀ ਦੜ ਮੁਫਲਸੀ ਤੇ ਸੋ
1: ओके जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ आपके साथ साथ होंगी. अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते, तो आपके पास मौजूद है जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नहीं बताया तो वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. अक्सर वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या ऐसी खास बात है या क्या ऐसी डिफरेंट बात है जो कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं बताती चलूं जरा ये डिफरेंस जो है वो जरा आप लोगों को समझाती चलूं. तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो ये बात आप पहले से समझ लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है, यानी नॉर्मल क्रीमों जैसी नहीं है. सबसे बेस्ट वाली बात यह है कि इसके अंदर जो है ना वो चीजें ऐड की गई है जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, खास करके उन लोगों के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट साबित होगा जो कि भाई अपनी स्किन सेंसिटिव स्किन की वजह से परेशान रहते हैं. तो अगर आप भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते और रीजन ये होता है कि भाई आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखना है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार किया गया एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है जो कि इस्तेमाल करते हैं आप तो सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाले रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सिर्फ दो रातें इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. आपकी स्किन पर जितने भी डार्क सर्कल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स को दूर करेगा और साथ साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हजरात हो खवातीन हो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. ओके जी, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है. तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और डी स्किन फेस वॉश की सबसे बेहतरीन बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन क्लीन रहेगी और आप हमेशा ग्लो करते रहेंगे. तो डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड साथ में आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक जबरदस्ती क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इस्तेमाल कीजिएगा और साथ साथ जो है अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए. उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03-15-799-0595. इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए. और मैंने जरा मालूमात ली कि ये जो इतने सारे लिसनर्स मुझे कहते हैं कि बाजी हमारी कॉल रिसीव नहीं होती, बाजी हम रब्ता करते हैं लेकिन कॉल पिक नहीं होती, तो इसका मुझे ये पता चला कि भाई अगर आप कॉल जो है ना कर रहे हैं तो पूरी कॉल करें, यानी कि आप मिस कॉल दे रहे होते हैं, अगले इंसान को तंग कर रहे होते हैं, आप कॉल करें प्रॉपर तरीके से कॉल नहीं कर पाते हैं तो आप मैसेज एक छोड़ दें छोटा सा कि आप फलां जगह से हैं और आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं ये प्रोडक्ट, तभी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, वरना जो है अगले इंसान को तंग मत किया करें, ठीक है ना, ये भी बहुत बुरी बात होती है. तो प्रॉपर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए एक छोटा सा कि आप अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर. और आपके लिए नंबर है जनाब 03-15-799-0595.

ओके जी, तो हम लास्ट लिंक में आ चुके हैं, टाइम बहुत ही ज्यादा, थोड़ा सा बचाए, आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं जी, आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स की जाने बातें हैं। फेसबुक पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, कुछ आप लोगों के कमेंट्स ऊपर भाग गए होंगे, सो उसके लिए माजरत कर देते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो जिंदगी में आकर चला जाए वो मतलब ही होता है। हाँ अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा उनका अलावा वजार कहते हैं, माँ अलाई कहीं जी गाल था कहो। अली अकबर बरोई भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको भी। और चाचा खालिद कहते हैं प्लीज रीड माय कमेंट्स। हाँ जी, वो जो आपके कमेंट्स है ना वो ऊपर चले गए हैं, तो वो जरा आप कोशिश कीजिएगा कि दोबारा सेंड करें आप, ताकि वो प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम हो सके। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और नखा अलावा हैं जी, ए एम अंसारी कहते हैं सलाम ऑल, गुड आफ्टरनून, हाउस यू ऑल, निन्नू आई उठा, डेटा ऑन की तो यूके शो का नोटिफिकेशन आ गया, उड़े दिल बेफिक्रे, क्या बात है जी, इतनी एक्साइटमेंट तेरे जाने का, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा। उनका अलावा जी

ओके जी, दर्द दिल कहते हैं ये टॉपिक चंदा, देखा जाए तो किसी का भी अब इंतजार नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है जी। बजात कहते हैं टॉपिक रोम्बे जो इंतजार न करण घुर्जे तोबा तोबा, सुबह शाम जमीन में पया हुंदा हूं। भाई अल्लाह क्या बात है जी। और रहे मोहम्मद जमान भाई, मोहम्मद जमान भाई क्या कहते हैं? हाँ, अब तो मेरे ख्याल में आपको सारी चीजों का पता चल गया होगा, तो ये अच्छी बात है। और ये हमारे साथ है ए एम अंसारी, कहते सिडो आ जायो। अच्छा, मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही बात है। वैसे आप अगर थोड़े से काले हो जाएंगे ना, तो उसे वैसे भी कहेंगे कि भाई चॉकलेट ही बुआ है तो बोला करें सह लेंगे थोड़ा सा। और आप खुद जरा परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर वाइट एज ब्यूटी क्रीम, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो आगे पैसे जो ना वो वसूल हो जाएंगे, समझ रहे हैं? ओके जी, सो ये एक और गाना हमारी लिस्ट में खुद ही चल गया, ये शमन मिराली की आवाज में गाना होने वाला है, जिसकी फरमाइश किसी भाई ने हमें कर दी थी, उनका मैसेज आएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, भाई को वेलकम करते हैं। ए मंसारी के टॉपिक पर इंतजार किसी भी चीज का इंसान को बहुत ही तकलीफ देता है। कुछ चीजें जो ऊपर से मिलनी हो वो मुकर्रर वक्त पे ही मिलती हैं, बट किसी का खुद को आदि बनाना बहुत ही अजियतनाक होता है। और जब गाने की आपने फरमाइश करी वो हम कल सुनेंगे, ठीक है? आज की लिस्ट तकरीबन फुल हो चुकी है। आज वैसे आने में आपने थोड़ी सी देर भी कर दी थी, है ना? मान रहे ना?

तेरी क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना साथ प्रोग्राम है सुना वाइट एज एंड जी स्किन ब्यूटी शो। वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं। गुलाम रहीम बलोच भाई हमारे

Ahí va, de अच्छा लुबी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते से जो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, कराची से आपका शो सुन रही हूँ और मेरे साथ मेरी कजिन्स भी आपका शो सुन रही हैं। कोई अच्छा सा गाना हमारे नाम कीजिएगा। कराची गली में कने वैसे भाई टीचर्स के ना मजे ही हैं कि उनको जून जुलाई की छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो इंजॉय कर रही हैं जिंदगी को, कर रहे हैं भाई। अच्छा आदिल हुसैन वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं और काफी दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और गाने की फरमाइश करिए, गाना हो सकता है मैं कल आपके लिए लगा दूंगी, आज की लिस्ट फुल हो चुकी है। ओके जी, अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, अलीजा आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। और निदड़ी भाई, निदड़ी जिंदा है और वो पता नहीं कहाँ है, इतना पता है कि वो जिंदा है। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि अदी मतलब मैं याद ना करूं तो तुम भी याद नहीं करोगी, दिन में मसरूफ होता हूं लेकिन रात को आकर सबसे पहले आपका शो सुनता हूं, मैं कमेंट ना करूं तो मेरा नाम लिया करे, रात को तो सुन ही लेता हूं मैं, चले मैं कोशिश करूंगी। अच्छा सूफिया ने मतलब हमारे साथ मौजूद, वालेकुम असलम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं सूफिया।

ओके जी, बहुत प्यारा गाना हमने सुना। एक और गाना है जो हमारी लिस्ट में मौजूद है, जिसकी फरमाइश हमें चाचा ने कर दी थी। चाचा तो आप समझ ही गए होंगे, तो गाना सुनेंगे और साथ साथ ओके जी इस्तेमाल कर रहे नहीं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये भी आप हमें जरूर बताया करें और साथ साथ डायल जरूर करती रहा करें 03 15 799 0594।

चाहता था तव्हां पंहिंजो गानो ॿुधो ऐं तव्हां पैनल ते मैसेजेस कया आहिनि गाने जे लाइ और मीरपुर ख़ासि अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही वालेकुम असलाम बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है क्या बात है जबरदस्त हो गया मेरे पास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी सॉन्ग सुनाओ कोई भी आपकी पसंद का व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम गुड है ओके वेरी नाइस और ये हमारे साथ है बाजी ही गानो तो हलायो कोई पहरियां सनम न हूंदो हो मुखे कोई भी गम न हूंदो हो इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है क्या बात इमरान भाई आपका भी वेलकम करते हैं और ये मौजूद है वालेकुम असलम क्या हाल है यहाँ पे सिद्रा मुस्कान आई फादिली लाशारी सॉन्ग सुनाओ ओ एस टी है चलिए मैं कोशिश करूंगी आपका गाना कल सुनेंगे ठीक है आपने सबको सलाम दिए हैं

आपके ये जी बहुत प्यारा गाना सुन रही हूँ। और विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजे सिलता आप कैसी हैं। टॉपिक इंतजार तो किसी का भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जानती हैं इंतजार मौत बराबर होता है, लेकिन हम आपके प्रोग्राम का इंतजार जरूर करते हैं। हमें शुमन का गाना सुनाइएगा जो चल गया वो आपके नाम था। और कहते हैं थैंक यू डेडिकेट डाइवर नजीर सोलंगी, आसिम अली सोलंगी, अलीजान सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड मुबशिर सोलंगी। ओके अच्छा चाचा खालिद, आपके जो वो टॉपिक वाले कमेंट थे ना वो वाकई ऊपर चले गए, मैंने देखा नहीं, अगर देख लेती तो वो वैसे ही आपका कमेंट रीड कर लेती। तो आप अगर पैनल पर मैसेज कर रहे थे तो वो जवाबी जरा लिख लेते तो वो मैं शामिल कर लेती। विलेज दाद वाह खान से मोहम्मद अलमानी हमारे साथ ही, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अली नवाज नूरपुर से टॉपिक आरजे, अच्छा कहते हैं आरजे लाला सुमरो का इंतजार नहीं किया करे, मैं नहीं जानती वो कौन है, तो ठीक है ओके। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई आपको खुशामदीद कहा जाता है, थैंक यू सो मच। और मायरा हमारा शो सुन रही है।

0: अच्छा हमारे साथ हैं, ये लिखते हैं कि तो अर्ज किया है कोई ऐसा अहले दिल हो जिसे सिर्फ मेरी आरजू हो, अगर खो जाऊं कहीं तो सिर्फ मेरी जस्तजू हो, मैं उसके जहनों दिल में कुछ इस तरह समा जाऊं, वो जबान जब भी खोले सिर्फ मेरी गुफ्तगू करे। गुलाम शबीर तुनियो फ्रॉम कंबर शो, तो VIP है भाऊ, बहुत शुक्रिया भाऊ आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ माजुक दे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।
1: इस तरह के कोई ना हो दरमियां।
0: अच्छा फहीम शेख कहते हैं कि हमारी कॉल लगी नहीं, आप ट्राई किया करें, आपकी कॉल जरूर लग जाएगी।
1: ऐसे से सपना कोई खिलाए, तेरे आने से आए दिल को कर।
0: अच्छा वजाद कहते हैं कि किस्मत इतनी खराब है कोई पैसा भी उधारा न थोड़े इन लाइ चंदा है, अगर कहीं पैसा वो था उधारा तो उनके टाइम ते वापस नींदा के जी हूँ आइंदा भी तमाम ट्रस्ट कर सके। अच्छा गुलाम हैदर फलपोटरों में सुन रहे मेरे प्रखा से, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि बिछड़े हुए लोगों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आई एग्री। अच्छा हिदायतुल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा फहीम अब आप गाने की फरमाइश किया करें, दर्द दिल बहुत शुक्रिया स्वीटू। बख्तली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम। AM कहते हैं कि मेरी ब्लैक ब्यूटी को चॉकलेटी बॉय कह दिया रिक्वेस्ट पे लेट बोल दिया, अब मैं रो लूं थोड़ा सा, ना ना आप रोइएगा मत, आप ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो रोते अच्छे बच्चे नहीं बल्कि बुरे बच्चे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करेंगे और आपकी ब्लैक ब्यूटी को जो है ना वो व्हाइट ब्यूटी में तब्दील करेंगे, बस थोड़ा इंतजार किया करें, सब्र किया करें। सुफियान भाई लाड़कना का मौसम बस ठीक ठाक है, मुझसे मौसम के बारे में मत पूछा करे, मैं मौसम के बारे में नहीं जानती। और उसके अलावा जी और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सबका बहुत शुक्रिया, आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कुछ फीडबैक्स रह चुके हैं प्रोग्राम में, तो आप लोगों से माजरत कर देते हैं, वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थियण वाली आ रही
1: है।
0: हमेशा बिल्कुल जी ये खिलंदा मुस्कुराइंदा रहंदा कयो,
1: ये चमकते
0: वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन उन्हें जो तुम्हारे इस्तेमाल कंदा रहंदा कयो। मोहम्मद बीरन जकरानी भात आज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया। अच्छा फहीम आज काफी रश था प्रोग्राम में, आप देख सकते होंगे सो इस वजह से हो चुका होगा, बाकी से कोई बात नहीं है। वो यास्मी ने बोला ना कि आप उसकी कॉल सुन चुके होंगे तो आप जानते होंगे उन्होंने क्या।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

बजट सेशन पूरो थियण खां पोइ बलदियाती कानून में तरमीम पेश की वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं रेंजर्स ऐं पुलिस भारती प्रॉक्सीज़ जे दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो। वफ़ाक फंड न पियो ॾिए, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ते कम करे रही आहे।

0: सिंध बजट मां मुल्तान में आईटी पार्क मूजिब पैसा मनसूबा डिना आहिनि। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में जज़्बाती थी वियो। अली खुर्शीदी चयो त हीउ कहिड़ो मज़ाक आहे, सिंध जे टैक्स जो पैसो मुल्तान में ख़र्च पियो थिए, इहे पैसा कंदकोट कश्मीर में ख़र्च कयो हा, हैदराबाद मीरपुर ख़ास या वरी कराची में ई ख़र्च कयो हा। हुकूमत चवंदी आहे त अपोजिशन सुठनि क़दमनि जी वाखाण नथी करे, असां सरदार शाह जे खयल तारीख़ी क़दमनि जी ॿ भेरा वाखाण कई आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी सदर पारां ईरान जो वजूद खत्म करण जी धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त जंगबंदी मुआहिदे जी भंजकड़ी ते अमेरिकी फौज ईरान खे निशानो बणायो। ईरानी मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडार साइट्स ते हमला कया विया आहिनि। अहिड़ो वक़्त

0: अची तरक्की छो न कयो। इन करे जो हिननि जा वरी जेके नुमाइंदा हुआ गवर्नमेंट में हुजनि या इदारनि में हुजनि बलदियाती इदारनि में हुजनि उन्हनि गैर कानूनी तौर ते अलाटमेंटूं कयूं। हज़ारनि दहशतगर्दनि खे छह छह हज़ार माण्हू उन्हनि हिकड़े हिकड़े ॾींहं में रखिया। कराचीअ जी तबाही जो असल सबबु त हे आहिनि।
1: एमक्यूएम पाकिस्तान वारा बोरी बंद लाश ॾींदड़ मुल्क दुश्मन ऐं सिंध टोड़ण जी ख़्वाहिशमंद मुतहदा जे बानीअ खे छॾे चुका आहिनि त हुन जी पॉलिसी छो था अख़्तियार कनि। सूबे वज़ीर नासिर शाह कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त कराचीअ जी असुल तबाही जो सबबु एमक्यूएम आहे। हुननि जो कमु कूड़ जे बुनियाद ते माण्हुनि खे भड़काइण आहे। हुननि बोरी बंद लाश ॾिना ऐं भताखोरी सिस्टम ॾिनो। बजट सेशन पूरो थियण खां पोइ मकानी कानून में तरमीम पेश कई वेंदी। गुज़िरियल ॾींहं रेंजर्स ऐं पुलिस भारत

0: अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

जमीजू बड़ा है हूँ भाषा मथुरा बने हूँ भाषा नचा नचा दिल दार काते दिसा मैं पंच मजार ऐसी वैसी न तू बात कर मुझे सेना को ही मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठ डर डर डर

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: के लिए शायद 10 लाख रुपए लगाने पड़े, उसके बाद 10 लाख नहीं होते। हमने सिंध बैंक से बात की है, स्कीम शुरू कर रहे हैं कि हम उस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जितना उसका महीने का बिल आता है उतनी वो महीने में अपनी इंस्टॉलमेंट देगा। हम उसको फाइनेंस कराएंगे, सिंध हुकूमत उसका कुछ ना कुछ जो स्प्रेड होगा या जो उसका काइबोर होगा वो ले लेगी खुद, और हम उनको भी फायदा दें कि वो सस्ती बिजली इस्तेमाल करें जो है। तो ये सारी मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली यू वर नॉट एबल टू सी ऑल दिस बिकॉज यू डिडंट लिसन टू द बजट स्पीच एंड डिडंट बॉदर टू लुक एट द बजट, रीड द बजट स्पीच लेटर। अगर ये कर लेते तो ये सारी चीजें मुझे रिपीट नहीं करनी पड़ती, आपका तकरीबन 1 घंटा बच जाता अभी, इसलिए कि हम ये बातें करते। मैं कहता यार आपने पढ़ी है स्पीच तो मैं बात नहीं करता इस पर। अच्छा जी, एक चीज में जो बात करना चाह रहा हूं अभी कि बड़ी बातें होती हैं कि यार पीपुल्स पार्टी ने क्या किया। अभी कायम अली शाह साहब ने बड़ी डिटेल में बताया जो पीपुल्स पार्टी कर चुकी है। मेरे पास अब मेरे साथ प्रॉब्लम यही होता है कि मैं, हाँ मिल गया, 18 साल का हिसाब दो फलाना, हमें तैयार है यार, हम दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, इसीलिए लोग हर इलेक्शन में हमें ज्यादा वोट देते हैं, हिसाब दे रहे हैं ना, और ईमानदारी से हिसाब दे रहे हैं, इसीलिए हम, इसीलिए मुझे 5 ही बार इलेक्ट किया है, इस अभी बताऊंगा। और क्यों इलेक्ट किया है, इसलिए पीपुल्स पार्टी काम कर रही है। मुराद अली शाह अगर पीपुल्स पार्टी से हट जाए मैं अपने गांव की पोलिंग हार जाऊंगा, मैं आपको बताता हूं। इसलिए मेरे अपने जो हारी है ना वो पीपुल्स पार्टी का काम जानते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं बड़ा क्लियरली। जो आप बात करते ना जो नाम लिए थे आज, पीपुल्स पार्टी किसी, वो क्या नाम क्या कहते हैं, इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं, इलेक्टेबल्स को पीपुल्स पार्टी की जरूरत है, अदरवाइज वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। ये पीपुल्स पार्टी के काम है सारे जो आप बातें करते। बहुत लोगों ने कोशिश की पीपुल्स पार्टी छोड़ के, और इलेक्शन लड़ नाम नहीं लूंगा, बातें ऐसी हो जाएंगी। उन्होंने मंजूर वसान साहब एक का जिक्र करते थे, इधर मरूम हो गए, इनका खैर बोलना नहीं चाहिए, वो जिक्र करते थे एक का, जब थोड़ा सा वो ओब्लिवियन में चले जाते हैं वहां पता ही नहीं होता कोई थे, ऐसा होता है पीपुल्स पार्टी की वजह से हम। और मैं सही बता रहा हूं आपको, और मैं आपके बिहाफ पे भी कह सकता हूं, अपने गांव की पोलिंग हार जाएंगे पीपुल्स पार्टी से अलग होके, तो देखे ये है पीपुल्स पार्टी की ताकत, आप समझते नहीं है, कहते हर दफे अब भाई जब 2008 में हम हुकूमत में आए, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने, जो सूबे के हालात थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का था, कॉन्वॉयज चला करते थे, वो कॉन्वॉयज जो हैं होम मिनिस्टर साहब ने सारे नंबर दिए थे, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा टाइम इसलिए मेरे पास भी, लेकिन मैं रिपीट नहीं करता, अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में। इधर आपको कई किस्से आपके अपने दोस्त बताते होंगे, फलाने मुल्क गए वो गए, भाई मेरा तो पासपोर्ट समेत सारी चीजें ले गए, अभी एक दोस्त के साथ हुआ है अमेरिका के अंदर कुछ दिनों पहले, मतलब ये पेटी क्राइम स्ट्रीट नॉट जस्टिफाइंग इट, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, मतलब ये पेटी क्राइम स्ट्रीट नॉट जस्टिफाइंग इट, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू इट, बट ये क्राइम होता है। बट अब हम परेशानी

0: तो ये उस वक्त हम ये डेंजर्स थे। आपको पता है शहर में जो दहशतगर्दी होती थी, आपको याद होगा उस वक्त जो कॉ कमांडर थे उनके ऊपर हमला हुआ था, 2006 की बात है, मुझे साल याद नहीं है। तो ये सूरत हाल थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, यू नो दैट व्हाट, अल्लाह ताला मेहरबान है। मैं भी कह रहा था, होम मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे, मैं अभी, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुहर्रम खैर खूबी से तीन इंसिडेंट्स हुए। अनफॉर्चुनेटली वो तीनों इंसिडेंट्स लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से नहीं थे, लेकिन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मैं कहता हूं कि यार हम तो अल्लाह के बंदे हैं, शायद कोई अच्छी बात अल्लाह ताला को हमारी पसंद आ रही है कि ये जो है फैगे से गुजरे। तो ये दहशतगर्दों को आपने देखा ना, वो तो मुड़ते ही नहीं है। मुझसे सवाल हुआ था, मैंने कहा नहीं ऐसी थ्रेट कोई नहीं है, लेकिन जो मुल्क के दुश्मन है वो इस मौके की ताक में रहेंगे, तो हमें बड़ा होशियार रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, एनर्जी सेक्टर, साई ने बात की इस पर, बड़ा फ्रेगमेंटेड था। थरकोल, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब, उनके विजन पूरा किया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 के बाद। अभी जरदारी साहब प्रेसिडेंट नहीं बने थे, मुझे याद है, साईं के साथ मैं था, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बिलावल हाउस में कहा कि ये थर कोल एनर्जी बोर्ड बनाओ, वफाक को भी साथ मिलाओ और इसको जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब है उसको पूरा करके दो। मेहनत कायम अलीशाह साहब की, मेहनत यार पैशन अनबिलीवेबल। मैं ये कई बार कहा, फिर दोबारा बताता हूं, बहुत टाइम लग गया कि मैं 5-6 घंटे बोल सकता हूं चीजों पे, लेकिन ये एक करिश्मे से कम नहीं था, एक मिरेकल से कम नहीं था, इसलिए कि कोई हमें बिलीव नहीं करता था। वफाक की जो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मिसाइल ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडा साइट से हमला कया विया आहिनि। अहिड़ो वक़्तु अची सघे थो जो असीं वधीक सभु न करे सघूं, पोइ असांखे कम पूरो करण जे लाइ फ़ौजी तरीक़ो इख़्तियार करणो पवंदो। जेकॾहिं ईअं थियो त इस्लामी जमहूरिया ईरान जो वजूद ख़तम थी वेंदो।

अमेरिका ईरान मुफ़ाहमत बावजूद विचो भर में छिकतान तेज़। अमेरिका पारां ॿिए ॾींहं ते बि ईरान ते हमला। ईरानी हरमुज़गान सूबे में हिक शहर ते चार मिज़ाइल फायर कया विया। सरिक शहर कशम बेट ते हमलनि जा आवाज़ ॿुधा विया। अमेरिकी सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरान जे ड्रोन हंधनि समेत दिफ़ाई हंधनि खे बि निशानो बणायो। कार्यवाही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी हिदायतुनि ते कयूं वयूं।

अमेरिकी हमलनि खां पोइ ईरान जी जवाबी कार्रवाई खिते में अमेरिकी हंधनि खे निशानो बणायो। ईरानी पासदार इंकलाब जो चवणु आहे त बहरैन ऐं कुवैत में अमेरिकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जो चवणु आहे त वाइदा टोड़णु अमेरिकी हुकूमत जी फितरत आहे। अमेरिका पंहिंजे वाइदनि जी परवाह न कंदो आहे। हमला इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्तनामे जी भञकड़ी आहिनि। ईरान क़ौमी ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा जे लाइ पुरअज़म आहे। कुवैती फ़ौज जो चवणु आहे त केतिरनि ई ड्रोन ऐं मिज़ाइल्स खे तबाह कयो वियो। बहरैन पारां पंहिंजी सरज़मीन ते ड्रोन हमलनि जी मज़म्मत।

0: एम क्यू एम वारा सिंध मां निकिरी पंजाब में दाखिल थियनि त खेन खेन आज़ादीअ जी ख़बर पइजी वेंदी। सिंध असेंबली में हर ॿोली ॻाल्हाईंदड़ मेंबर मौजूदु आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में ख़िताब। वॾे वज़ीर एम क्यू एम खे मुख़ातिब थींदे चयो त हिन धरतीअ खे समझो ऐं हुनखे क़बूल कयो। शुक्र कयो तव्हां कंहिं ॿी सूबाई असेंबली जा मेंबर न आहियो। पाकिस्तान जे क़याम में असां अव्हांजे सभिनी जे वॾनि जूं क़ुर्बानीूं शामिल आहिनि। हर साल जे हिन बजट में बि आवाम खे रिलीफ मुहैया करण जी कोशिश कई आहे।
1: दहशतगर्द हुआ असां त हिननि खे चऊं था त बाबा तव्हां पंहिंजे हुन जेको बि तव्हांजो हुयो जिन खे तव्हां छॾे आयो हुननि जी पॉलिसीज जे करे हाणे जे उहा ॻाल्हि निकिरे त हुनखे ओन छो था कयो। तव्हां त हुन खां परे थियो न त बाबा असां इन करे ई छॾियोसीं त मुल्क दुश्मन हुयो सिंध खे हिसनि में विरहण चाहे पियो जिनापुर जो ख़्वाब ॾिसे पियो ऐं दहशतगर्द हुयो हुननि माण्हुनि खे हिते गोरी बंद लाशूं ॾिनियूं पता कल्चर ॾिनो रोज़ जलाओ घेराओ ऐं इहे जेके पाहियूं ॾिनी वेंदियूं कराची तरक़ी छो न कयो। इन करे जो हिननि जा वरी जेके नुमाइंदा हुया गवर्नमेंट में हुजनि या इदारनि में हुजनि बलदियाती इदारनि में हुजनि हुननि गैर कानूनी तौर ते अलाटमेंटूं कयूं हज़ारनि दहशतगर्दनि खे छह छह हज़ार माण्हू हुननि हिकड़े हिकड़े ॾींहं में रखिया। कराचीअ जी तबाही जो असल सबब त हे
0: एम क्यू एम पाकिस्तान वारा ॿोरी बंद लाश ॾींदड़ मुल्क दुश्मन ऐं सिंध टोड़ण जे ख़्वाहिशमंद मुतहदा बानी खे छॾे चुका आहिनि त हुन जी पॉलिसी छो

0: GAC.
1: Dry C. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88
2: नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: 0331257786।
1: जी हाँ, बुड़ी 331 5575786।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: देखो।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: कश्मोर कनकोट ब्रिज की बात की. कश्मोर कनकोट ब्रिज जो है अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें इधर है मेरे पास फाइनेंशियल डिटेल्स यार. अब मैं बहुत मैं खुद लंबी तकरीर कर गया. एक दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक वो कश्मोर कनकोट ब्रिज पे आपको पूरी डिटेल दे दूंगा फाइनेंशियल उसकी है. हमें उधर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स थे. अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गए और वो तेजी से ब्रिज जा रही है. अगले 3-4 महीने फिर उस पर काम स्लो हो जाएगा इसलिए बारिश सॉरी पानी आ जाएगा दरिया में. लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उसको मैं अगले साल जून तक कह रहा हूं. जो हमारे डिपार्टमेंट है लोग हैं वो दिसंबर तक कह रहे हैं कंप्लीट करने के लिए. कोशिश होगी अगले साल जून तक इसको कंप्लीट करा ले. अच्छा एक बिफोर आई गो टू द लास्ट वन. हाँ वही तो बताया पे उत्ते ही आए हुए हैं उत्ते ही उधर ही. अच्छा भाई अली भाई हम सिर्फ मुल्तान में नहीं बना रहे. अभी मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ और उसका वजह भी बताता हूँ ना. अभी आपने यार जो हम समझते हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं उसको ही समझते ही नहीं है. अब ऐसे कुछ बताता हूँ. हाँ जी हमारी सिंध पीपुल्स हाउसिंग फॉर फ्लड जो है ना वो सोबतपुर जाफराबाद में 2 अरब रुपए के घर बना रही है. हम बना रहे आपको बता देता हूँ कैसे बना रहे हैं ना. 2 अरब रुपए के घर बना सिर्फ मुल्तान नहीं है तो बलूचिस्तान हो गया. रहीम यार खान में हम SIUT का किडनी हॉस्पिटल बना रहे हैं. ठीक है जी. गुजर खान रावलपिंडी में हम SIUT का अस्पताल बना रहे हैं. सिंध हुकूमत बना रही है. ठीक है जी. सरगोधा में भेरा में हम SIUT का किडनी सेंटर बना रहे हैं. डिमांड थी उधर लोगों की. ये लोकल लोगों की डिमांड थी कि सिंध आए और हमें काम करके दे तो हम करके दे रहे हैं यार. अरे सुने आगे सुने आगे सुने. डेरा इस्माइल खान में खैबर पख्तूनख्वा में हम SIUT का अस्पताल बना रहे हैं. आगे सुनो सुनो. अच्छा जी कोट अद्दू में भी हम SIUT का अस्पताल बना रहे हैं. सुनो तो सही यार सबर सबर. कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स कॉलेज एंड वुमेन वोकेशनल सेंटर भटखेला मालाकंड में KPK में एक और बलोचिस्तान पंजाब KPK और इनको एक ही नजर आया पता नहीं क्यों बाकी नजर नहीं आया. हम मुल्तान में IT पार्क बना रहे हैं बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में. ओ भाई ये सब बना रहे हैं ना सिंध हुकूमत बना रही है उसके लिए वफाक हमें 9 अरब रुपए दे रही है. वहां से पैसे चेयरमैन ने लाए हैं कि लोकल्स कहते हैं कि हमें सिंध हुकूमत बना के दे और वफाक ने वो किया. 9 अरब रुपए 11 अप्रैल 2025 को आए और 8 अरब रुपए 18 जून 2026 को आए. वफाक से पैसे आए हैं कि सिंध आके हमारे सूबों में काम करे. उन लोग आप लोगों को पसंद ही नहीं है. मैं ठीक है जी. अच्छा जी. अच्छा एक दो चीजें और हुई थी जो बातें हुई थी. देखें मैं चले उसको नहीं छेड़ता हूं इसलिए कि वो अभी सब्जेक्ट है आपने उठा लिया था. SPSC वाले केस पे मैं बोलना चाह रहा था. जो कोर्ट्स के रिमार्क्स हैं वो भी दिखाना चाह रहा था आपको लेकिन मैं वो सब्जेक्ट है तो उसको नहीं उठाता. भले कोर्ट को फैसला कर लेने दें. ठीक है जी. और क्या रह गया आपका. हैदराबाद मीरपुर खास को बता दिया. आपने IBS शक्कर की मिसमैच का कहा था टीचिंग का कि करें देखते हैं उसको कि हम बिल्कुल कर रहे हैं और ऑटोमेट करें कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. बिल्कुल आपकी जायज ये बात थी और इस पर हम सोच रहे हैं. और क्या है. MP हॉस्टल की बात हुई थी वो आप.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: आप सुन रहे हैं
3: आप सुन रहे हैं
2: GAFM.

0: मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हाँ, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा। कराची में रेंजर्स ऑफिस बाहरा हमलो नाकाम, धमाको केतराई दहशतगर्द मारजी विया, बाय हलकार शहीद। चटाभेटी इम्तिहान 2024 सिंध सर्विस कमीशन के जवाबी कापियूं सील करे पेश करण जो हुकुम। मुतहदा पारां बीहर अलग सूबे जो रिंगट, तालीमी इदारनि में मंशियात टेस्ट जो ऐलान, ॾोहनि में 10% घटताई थी आहे। नगर पार्कर भरिसां अणॼातल शिकारी नायाब नसल जा 3 जिंदा हरण पकड़े फरार, ॻोठाणनि पारां कार्रवाई जो मुतालबो। सांगड़ ज़िले में नई फुटी लहण शुरू, कॉटन फैक्ट्रियुनि पारां ख़रीदारी शुरू, नकली बिज ऐं पाणीअ जी खोड़ सबबि फुटीअ जी पैदावार मुतासिर। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, नेरानी पाणी पीअण सां जिस्म ते कहिड़ा असर पवनि था। सिंध हाई कोर्ट पारां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दरख्वास्त गुजारन जूं जवाबी कापियूं सील करे पेश करण जो हुकुम। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहाननि ऐं नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल मुख़्तलिफ़ दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी कंदे दरख़्वास्त गुज़ारन जूं इम्तिहानी कापियूं पेपर सील करे पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत सेशन जे हैदराबाद खे हिदायत कई आहे त लाॻापियल रिकॉर्ड हासिल करे अदालत में पेश कयो वञे। उन सिलसिले में अदालत लिखत में हुकुमनामो पिण जारी करे छॾियो। हुकुमनामे मूजिब दरख़्वास्त गुज़ारन मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त खेन कमज़ोर ऐं गैर मक़बूल बुनियादनि ते नाकाम करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो चवणु आहे त उमेदवारनि खे मुकमल मेरिट जे बुनियाद ते नाकाम करार ॾिनो वियो आहे। नतीजनि में कंहिं बि क़िस्म जी बदनीयतीअ जो अंसर शामिल न आहे। ॿुधणी दौरान अदालत वधीक ॿिनि उमेदवारनि जी धुर बणजण वारी दरख़्वास्त बि मंज़ूर करे वरिती। अदालत सेशन जज हैदराबाद खे हिदायत कई आहे त हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां दरख़्वास्त गुज़ारनि जूं जवाबी कापियूं हासिल करे समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पंहिंजे नुमाइंदे वसीले अदालत में पेश करे। हुकमनामे मूजिब समूरो रिकॉर्ड अदालत तरफ़ां मुक़रर कयल मजिस्ट्रेट जे मौजूदगीअ में डीसेल कयो वेंदो। कराची जे इलाइक़े मौसमियात वेझो रेंजर्स ऑफिस ॿाहिरां दहशतगर्दनि जो हमिलो नाकाम, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। पुलिस ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि रेंजर्स जे ट्रांसपोर्ट ऑफिस जे गेट ते दस्ती बम उछलायो ऐं गाॾी अंदरि दाख़िल करण जी कोशिश कई। मौके ते मौजूद अहलकारनि दहशतगर्दनि सां मुक़ाबलो करे हमले खे नाकाम बणाए छॾियो। फायरिंग जी ॾे वठि में हमिलो कंदड़ समूरा दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि सां फायरिंग जी ॾे वठि में रेंजर्स जा 5 अहलकार ज़ख़्मी थिया आहिनि, जंहिं मां 3 जी हालत गणती जोगी ॿुधाई पई वञे। वाकिए जे इतलाह खां पोइ रेंजर्स, पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जा अटाला वाके वारे हंधि पहुची विया। इलाइक़े खे सील कयो वियो। SSP ओभर ज़ुबैर नज़ीर शेख, DIG ओभर एडिशनल IG कराची, IG सिंध ऐं CTD जा आफ़िसर बि वाके वारे हंधि पहुता ऐं सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। आख़िरी इतलाहनि ताईं क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी हो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जी सुञाणप ऐं संदन रूट जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। सरकारी सतह ते मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग तोड़े ज़ख़्मी अहलकारनि जी तादाद जी तस्दीक न कई वई आहे। होॾां सोशल मीडिया ते बंदिश पियल जमियत अहरार वाकिए जी ज़िमेवारी क़बूलींदे ॼाणायो आहे त संदन 9 कारकुन अंदरि दाख़िल थियण में कामयाब थी विया। राति देर सां छिपा तर्जुमान 2 अहलकारनि जी शहादत जी तस्दीक कई हुई। सिंध असेंबलीअ में MQM पारां ॿीहर अलॻि सूबे जो रिंगट, घरू वज़ीर पारां गुज़िरियल साल जे भेट में फुरन, स्ट्रीट क्राइम ऐं चोरीअ जे वारदातुनि में घटताई जी दावा कई आहे। काल्ह घरू वज़ीर जवाहर लाल सलंजार अमन अमान ऐं धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते तफ़सीली अंग अखर पेश कंदे चयो त गुज़िरियल सालनि जे भेट में कराचीअ में ॾोहनि जे शरह में वाज़े घटताई आई आहे। कराचीअ में मोबाइल फुरजे वाक्यनि में 7 कारुनि जी चोरीअ में 34 ऐं स्ट्रीट क्राइम में 40% घटताई रिकॉर्ड कई वई आहे। ॾोहनि में मजमूई तौर 10% घटताई आई आहे। हुन ॿुधायो त CTD ऐं ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि सूबे में 642 IBOs ऑपरेशन कया, जिन में 66 दहशतगर्द गिरफ़्तार कया विया। कचे वारे इलाइक़े में ऑपरेशन निजात मेहराण तहत 48 धाड़ेल मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त सरेंडर पॉलिसीअ तहत 549 धाड़ेलनि हथियार फिटा कया आहिनि। नतीजे तौर घोटकी ऐं रावतीअ समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नोगो एरियाज़ जो ख़ात्मो थियो आहे। 1,15,000 एकड़ ज़मीन धाड़ेलनि जे कब्ज़े मां आजी कराई वई आहे। हुन चयो त शहीद पुलिस अहलकारनि जे वारसनि खे 2.5 करोड़ रुपया ऐं 2 नौकरियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। ज़ख़्मियुनि जे इलाज जे लाइ ख़ानगी अस्पतालुनि में 20 लख रुपियनि ताईं जो ख़र्चो सिंध हुकूमत बर्दाश्त कंदी। घरू वज़ीर ऐवान खे ॿुधायो त सेफ सिटी फेज़ 1 मुकमल थी चुको आहे।
हुन जो त तालीमी इदारनि में मंशियात टेस्ट कराई वेंदी। उन लाइ सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस जे रूल्स में तरमीम करे रूल 19 ई तहत तालीमी इदारनि में शागिर्दनि जी ड्रग टेस्ट लाज़मी करणु संजीदगीअ सां गौर कयो पियो वञे। मकानी इदारनि वारे वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त फंड्स जी खोट बावजूदि हीउ बजट अवाम दोस्त आहे। हिन साल 1000 खां वधीक तरक़ियाती स्कीमूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि। ईंदड़ माली साल में 2000 खां वधीक स्कीमूं मुकमल कयूं वेंदियूं। एम क्यू एम जे मेंबर ताहा अहमद चयो त नवनि सूबनि जे क़याम जी ॻाल्हि आइन में मौजूदु आहे, उन खे गदारीअ सां न भेटियो वञे। नगर पार्कर भरिसां अणॼातल शिकारी नायाब नस्ल जा टे ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। ॻोठाणनि पारां कार्रवाई जो मुतालबो, उन ॾस में ॻोठ बहराऊ जे झंग वारे इलाइक़े में नामालूम शिकारियुनि पारां मुबैना तौर नायाब नस्ल जा टे ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। मकामी रहवासियुनि सरदार सिंह मूजिब राति देर सां अणॼातल शिकारी सर्च लाइटुनि जी मदद सां इलाइक़े में दाख़िल थिया ऐं हरण पकड़े खणी विया। इतलाह मिलण बाद ॻोठाणनि मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते नाकाबंदी करे शिकारियुनि खे रोकण जी कोशिश कई, पर मुबैना तौर हू गाॾीअ ज़रिए फरार थियण में कामयाब थी विया। वाके बाबति वाइल्ड लाइफ खाते जे इशफाक़ में मिण तस्दीक कंदे चयो आहे त हरण तौर हू

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। रोज़ानो आदतुन में नंढियूं तब्दीलियूं भी सेहत ते मुस्बत या मनफी असर विझी सघनि थियूं। माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं सुबुह जो नेराणो थधो पाणी पीजे त उन जा जिस्म ते कुझु दिलचस्प असर ज़ाहिर थी सघनि था। पाणी थधो हुजे या आम गर्मी पद वारो, ॿिन्ही सूरतुनि में उहो जिस्म खे पाणीअ जी खोट खां बचाइण में मदद ॾिए थो। पर सुबुह सवेर थधो पाणी पीअण जा कुझु अलॻि फ़ाइदा बि साम्हूं आया आहिनि। जिस्म में पाणीअ जी सतह बहितर थिए थी। राति जे डिघी निंड खां पोइ जिस्म में पाणीअ जे मामूली खोट थी सघे थी, जंहिं सबब थकावट, कमज़ोरी, ध्यानु ॾियण में ॾुखियाई ऐं मथे जे सूर जहिड़ा मसला पैदा थी सघनि था। सुबुह जो पाणी पीअण सां जिस्म खे ताज़गी महसूस थिए थी ऐं पाणीअ जी सतह बहितर थिए थी।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा। कराची में रेंजर्स ऑफिस बाहरा हमलो नाकाम, धमाको, केतराई दहशतगर्द मारजी विया, बह अहलकार शहीद। चटाभेटी इम्तिहान 2024 सिंध सर्विस कमीशन के जवाबी कापियूं सील करे पेश करण जो हुकुम। मुतहदा पारां बीहर अलग सूबे जो रिंगट, तालीमी इदारनि में मंशियात टेस्ट जो ऐलान, ॾोहनि में 10% घटताई थी आहे। नगर पार्कर भरिसां अणॼातल शिकारी नायाब नसल जा 3 ज़िंदा हरण पकड़े फरार, ॻोठाणनि पारां कार्रवाई जो मुतालबो। सांगड़ ज़िले में नई फुटी लहण शुरू, कॉटन फैक्ट्रियुनि पारां ख़रीदारी शुरू, नकली बिज ऐं पाणीअ जी खोट सबबि फुटीअ जी पैदावार मुतासिर। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, नेरानी पाणी पीअण सां जिस्म ते कहिड़ा असर पवनि था। सिंध हाई कोर्ट पारां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे दरख़्वास्त गुज़ारन जूं जवाबी कापियूं सील करे पेश करण जो हुकुम। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहाननि ऐं नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल मुख़्तलिफ़ दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी कंदे दरख़्वास्त गुज़ारन जूं इम्तिहानी कापियूं पेपर सील करे पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत सेशन जे हैदराबाद खे हिदायत कई आहे त लाॻापियल रिकॉर्ड हासिल करे अदालत में पेश कयो वञे। उन सिलसिले में अदालत लिखत में हुकुमनामो पिण जारी करे छॾियो। हुकुमनामे मूजिब दरख़्वास्त गुज़ारन मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त खेनि कमज़ोर ऐं गैर मक़बूल बुनियादनि ते नाकाम करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो चवण आहे त उमेदवारनि खे मुकमल मेरिट जे बुनियाद ते नाकाम करार ॾिनो वियो आहे। नतीजनि में कंहिं बि क़िस्म जी बदनीयतीअ जो अंसर शामिल न आहे। ॿुधणीअ दौरान अदालत वधीक ॿिनि उमेदवारनि जी धुर बणजण वारी दरख़्वास्त बि मंज़ूर करे वरिती। अदालत सेशन जे हैदराबाद खे हिदायत कई आहे त हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां दरख़्वास्त गुज़ारनि जूं जवाबी कापियूं हासिल करे समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पंहिंजे नुमाइंदे वसीले अदालत में पेश करे। हुकमनामे मूजिब समूरो रिकॉर्ड अदालत तरफ़ां मुक़रर कयल मजिस्ट्रेट जे मौजूदगीअ में डीसेल कयो वेंदो। कराची जे इलाइक़े मौसमियात वेझो रेंजर्स ऑफिस ॿाहिरां दहशतगर्दनि जो हमिलो नाकाम, केतिराई दहशतगर्द मारिजी विया। पुलिस ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि रेंजर्स जे ट्रांसपोर्ट ऑफिस जे गेट ते दस्ती बम उछलायो ऐं गाॾी अंदर दाख़िल करण जी कोशिश कई। मौके ते मौजूद अहलकारनि दहशतगर्दनि सां मुक़ाबलो करे हमले खे नाकाम बणाए छॾियो। फायरिंग जी ॾे वठ में हमिलो कंदड़ समूरा दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि सां फायरिंग जी ॾे वठ में रेंजर्स जा 5 अहलकार ज़ख़्मी थिया आहिनि, जंहिं मां 3 जी हालत ॻणिती जोगी ॿुधाई पई वञे। वाकिए जे इतलाउ खां पोइ रेंजर्स, पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जा अटाला वाके वारे हंधि पहुची विया। इलाइक़े खे सील कयो वियो। SSP ओभर ज़ुबैर नज़ीर शेख, DIG ओभर एडिशनल IG कराची, IG सिंध ऐं CTD जा आफ़ीसर बि वाके वारे हंधि पहुता ऐं सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। आख़िरी इतलाउनि ताईं क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी हो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जी सुञाणप ऐं संदन रूट जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। सरकारी सतह ते मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग तोड़े ज़ख़्मी अहलकारनि जी तादाद जी तस्दीक न कई वई आहे। होॾां सोशल मीडिया ते बंदिश पियल जमियत अहरार वाके जी ज़िमेवारी क़बूलींदे ॼाणायो आहे त संदन 9 कारकुन अंदर दाख़िल थियण में कामयाब थी विया। राति देर सां छिपा तर्जुमान 2 अहलकारनि जी शहादत जी तस्दीक कई हुई। सिंध असेंबलीअ में MQM पारां ॿीहर अलॻि सूबे जो रिंगट, घरू वज़ीर पारां गुज़िरियल साल जे भेट में फुरन, स्ट्रीट क्राइम ऐं चोरीअ जे वारदातुनि में घटताई जी दावा कई आहे। काल्ह घरू वज़ीर जालस अलंजार अमन अमान ऐं धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते तफ़सीली अंग अखर पेश कंदे चयो त गुज़िरियल सालनि जे भेट में कराचीअ में ॾोहनि जे शरह में वाज़े घटताई आई आहे। कराचीअ में मोबाइल फुरजे वाक्यनि में 7 कारुनि जी चोरीअ में 34 ऐं स्ट्रीट क्राइम में 40% घटताई रिकॉर्ड कई वई आहे। ॾोहनि में मजमूई तौर 10% घटताई आई आहे। हुन ॿुधायो त CTD ऐं ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि सूबे में 642 IBOs ऑपरेशन कया, जिन में 66 दहशतगर्द गिरफ़्तार कया विया। कचे वारे इलाइक़े में ऑपरेशन निजात मेहराण तहत 48 धाड़ेल मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त सरेंडर पॉलिसीअ तहत 539 धाड़ेलनि हथियार फिटा कया आहिनि। नतीजे तौर घोटकी ऐं रावतीअ समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नोगो एरियाज़ जो ख़ात्मो थियो आहे। 1,15,000 एकड़ ज़मीन धाड़ेलनि जे कब्ज़े मां आजी कराई वई आहे। हुन चयो त शहीद पुलिस अहलकारनि जे वारसनि खे 2.5 करोड़ रुपया ऐं 2 नौकरियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। ज़ख़्मियुनि जे इलाज जे लाइ ख़ानगी अस्पतालुनि में 20 लख रुपियनि ताईं जो ख़र्चो सिंध हुकूमत बर्दाश्त कंदी। घरू वज़ीर ऐवान खे ॿुधायो त सेफ सिटी फेज़ 1 मुकमल थी चुको आहे।
हुन जो त तालीमी इदारनि में मंशियात टेस्ट कराई वेंदी। उन लाइ सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस जे रूल्स में तरमीम करे रूल 19 ई तहत तालीमी इदारनि में शागिर्दनि जी ड्रग टेस्ट लाज़मी करण संजीदगीअ सां गौर कयो पियो वञे। मकानी इदारनि वारे वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त फंड्स जी खोट बावजूद ही बजट अवाम दोस्त आहे। हिन साल 1000 खां वधीक तरक़ियाती स्कीमूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि। ईंदड़ माली साल में 2000 खां वधीक स्कीमूं मुकमल कयूं वेंदियूं। एम क्यू एम जे मेंबर ताहा अहमद चयो त नवनि सूबनि जे क़याम जी ॻाल्हि आइन में मौजूद आहे, उन खे गदारीअ सां न भेटियो वञे। नगर पार्कर भरिसां अणॼातल शिकारी नायाब नस्ल जा टे ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। ॻोठणनि पारां कार्रवाई जो मुतालबो। उन समी ॻोठ बहराऊ जे झंग वारे इलाइक़े में नामालूम शिकारियुनि पारां मुबैना तौर नायाब नस्ल जा टे ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। मकामी रहवासियुनि सरदार सिंह मूजिबि राति देर सां अणॼातल शिकारी सर्च लाइटुनि जी मदद सां इलाइक़े में दाख़िल थिया ऐं हरण पकड़े खणी विया। इतलाउ मिलण बाद ॻोठणनि मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते नाकाबंदी करे शिकारियुनि खे रोकण जी कोशिश कई, पर मुबैना तौर हू गाॾीअ ज़रिए फरार थियण में कामयाब थी विया। वाक़े बाबति वाइल्ड लाइफ खाते जे इशफाक़ में मिण तस्दीक कंदे चयो आहे त हरणनि जी खणी वञण बाबति इतलाउ मिलिया आहिनि।

सरई पाणीअ जे खोड़ सबबि सांगड़ ज़िले में कपह जी पैदावार ते असर पियो आहे, जॾहिं त चूहड़ जमालीअ जी फुटीअ जे हिकु वण मां 14.5 किलो कपह निकिरे थी। पंजाब जे अघु 1000 रुपया वधीक आहे। ॿिए तरफ़ आबादगारनि वरी फैक्ट्री मालिकनि ते फुटीअ जो अघु 1000 रुपया फी मण घटाइण जो इल्ज़ाम हयो आहे। उन रसमी आबादगारनि दायो आहे त कॉटन फैक्ट्री मालिकनि पंहिंजे मर्ज़ीअ जा अघु मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में फुटी 9,300 खां 9,500 रुपया मण ख़रीद थिए पई। सांगड़ ज़िले में कॉटन फैक्ट्री मालिकनि पंहिंजी हिकु हठी क़ाइमु कंदे फी मण ते 1,000 रुपया घटि करे छॾियो आहे। हिननि सहमिया खां मसलो हल करण जी घुर कई आहे।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। रोज़ानो आदतुनि में नंढियूं तब्दीलियूं बि सिहत ते मुस्बत या मनफ़ी असर विझी सघनि थियूं। माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं सुबुह जो नेरानो थधो पाणी पीजे त उन जा जिस्म ते कुझु दिलचस्प असर ज़ाहिर थी सघनि था। पाणी थधो हुजे या आम गर्मी पद वारो, ॿिन्ही सूरतुनि में उहो जिस्म खे पाणी जी खोट खां बचाइण में मदद ॾिए थो। पर सुबुह सवेर थधो पाणी पीअण जा कुझु अलॻि फ़ाइदा बि साम्हूं आया आहिनि। जिस्म में पाणी जी सतह बहितर थिए थी। रात जी डिघी निंड खां पोइ जिस्म में पाणीअ जे मामूली खोट थी सघे थी, जंहिं सबब थकावट, कमज़ोरी, ध्यानु ॾियण में ॾुखियाई ऐं मथे जे सूर जहिड़ा मसला पैदा थी सघनि था। सुबुह जो पाणी पीअण सां जिस्म खे ताज़गी महसूस थिए थी ऐं पाणीअ जी सतह बहितर थिए थी। हाज़मे जो निज़ाम बहितर थिए थो। ॾींहं जी शुरूआत पाणीअ सां करणु हाज़मे वारे निज़ाम खे सरगर्म करण में मददगार साबित थी सघे थी। पाणी खुराक जे नाले में मौजूदु फुज़िले ऐं खाधे खे अॻिते वधाइण में मदद ॾिए थो, जंहिं सां हाज़मे जा अमल वधीक मौसर थियनि था। उन सां गॾु आंडरनि जी कारकरदगी बि बहितर थिए थी ऐं कब्ज़ खां बचण में बि मदद मिले थी। तवानाई ऐं ज़हनी कारकरदगीअ में वाधि। जिस्म में पाणीअ जी खोड़ सबबि थकावट महसूस थी सघे थी, जॾहिं त सुबुह जो पाणी पीअण सां जिस्मानी तवानाई, यादगिरी ऐं ध्यानु ॾियण जी सलाहियत बहितर थियण में मदद मिली सघे थी। थधो पाणी दिमाग़ ॾांहुं रत जे वहुकरे खे बि वधाए सघे थो, जंहिं सां ज़हनी चुस्ती ऐं होशियारीअ में इज़ाफ़ो थी सघे थो। मेटाबोलिज़म में मामूली तेज़ी। कुझु तहक़ीक़ी रिपोर्ट मूजिबि नेरानी थधो पाणी पीअण सां मेटाबोलिज़म जी रफ़्तार में मामूली इज़ाफ़ो थी सघे थो। जिस्म खे पंहिंजे अंदरूनी गर्मी पद खे बरक़रार रखण जे लाइ थोरी वधीक तवानाई ख़र्च करणी पवे थी, जंहिं सां कैलोरीज साइण जो अमल कुझु तेज़ थी सघे थो। मुनासिब मक़दार में पाणी पीअणु जिस्मानी वज़न खे कंट्रोल में रखण में बि मददगार साबित थिए थो। माहिरनि जी सलाह। रिपोर्टुनि मूजिबि पाणी घटि पीअण सां कब्ज़, थकावट ऐं ज़हनी कारकरदगी में घटाई जा ख़तरा वधी सघनि था। बहरहाल, हर माण्हूअ जी जिस्मानी ज़रूरत मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे, तंहिं करे सिहत बाबति कंहिं बि ख़ासि आदत इख़्तियार करण खां अॻु पंहिंजे डॉक्टर सां सलाह करणु मुनासिबु आहे। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।